रुपियाँ मात्र। भण्डारी दाईको खाजा तथा बिरयानी घर वीरेन्द्रनगर 9 लाटिकोली रोड सुर्खेत मंगलडी चोक नजिकै। प्रोप्राइटर शिवराज भण्डारी। भण्डारी दाई। मोबाइल नम्बर 98696552।

उज्यालो रेडियो नेटवर्क DHTTFM स्टेशन व अनलाइन पाखे हलिङ्गको छक्कलम प्रसारण चिताइया नेपाबुखे प्राविधिक भाषा प्रवीण श्रेष्ठ जी कुमार रञ्जित्या जजलपा प्रधान न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्मा पद बहाली यान जीव सर्वोच्च अदालत बोलना चंगु छगु तहय विवाद पोचाल असन्तुष्ट सपना मल्ल प्रधान निशी नेपाल बार एसोसिएशन शपथ ज्याजोले बोतिमका प्रतिनिधि सभा विपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टी प्ले कार्ड बोया विरोध पंकाचन कृषि मन्त्रालय छगुलक पी पेदो च्यासौ सङ्गु मेट्रिक टन रासायनिक मल मौदा दुगु खपित होला व परीक्षा न्योहे पौलिसे निगत शनिले नियुक्त जजमा प्रधान न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्मा पद बहाली यान जीव सर्वोच्च अदालत बोलन चंगु छगु तहय विवाद कोचाकुदो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पद व गोपनीयता शपथ नकेव नुम प्रधान न्यायाधीश डाक्टर शर्मा सर्वोच्च अदालत होना पद बहाली यान जीवु ख राष्ट्रपति ज्याकु शीतल निवासे जुगु शपथ नकु गुजाजोले उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सभामुख डोलेन्द्र प्रसाद अर्याल व राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल बोलिकया जीवु ख संसदीय सुनवाई समिति फास्ट ट्र्याकमा सुनवाई याना वे कय नियुक्ति व पदभारी नप छनुहेको च्याकु ख नेपाल संविधान धारा 129 उपधारा 2 कथा संवैधानिक परिषद सिफारिसे राष्ट्रपति पौडेल निगर डाक्टर शर्मा यता प्रधान न्यायाधीश पद नियुक्ति दिउ ख वे यो सिंहदरबारे चौ संसदीय सुनवाई समिति बैठक प्रधान न्यायाधीश पद वे कय त सर्वसम्मति अनुमोदन यागु ख संवैधानिक परिषद सिफारिसे संसदीय सुनवाई समिति अनुमोदन याउ राष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति यागु संवैधानिक व्यवस्था दो 2027 असार 4 गते पर्साया वीरगंजे जन्मजुम नुम प्रधान न्यायाधीश डाक्टर शर्मा 2076 वैशाख 6 गते कुनो सर्वोच्च अदालतीय न्यायाधीश यदिउ ख नेपाल ल क्याम्पस बीएल व भारतीय पुणे विश्वविद्यालय एलएलएम एनडी मोबेकल त्रिभुवन विश्वविद्यालय श्रम कानूनी विद्यावारिधि एनडीउ ख न्याय खेले कानून व्यवसाय पाखे दुवा छाइदी म डाक्टर शर्मा 2070 साल जेठ 27 निशे 72 मंगसी 26 तक उच्च अदालतीय अतिरिक्त न्यायाधीश जाइदिउ ख प्रधान न्यायाधीश डाक्टर शर्मा या कार्यकाल 2089 असार 4 तक जी नुम प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति असन्तुष्ट कायम ज्याचनदीमा प्रधान न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान निशे नेपाल बार एसोसिएशन शपथ नगुकु ज्याजोले बोतिमका 12 मेग लालटिन च्याका विरोध पंकुकु ख थौ वे कपिनी ज्याजो वे ल्याउँदरी प्रतिनिधि सभा विपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टी प्ले कार्ड बया विरोध पंका चौधो सभामुख मुजा झाके पार्टी नायक हर्क साङपाङ लिसिया सांसद त थपिने थासन्तना प्ले कार्ड केना विरोध बोजायाम चौ ख संसदे नवायत ई फर्म साङपाङ ई मबी व संसद मुजा तोता प्याउ ख वे यो संसदीय कार्यवाही झाँचौ भने श्रम संस्कृति पार्टी सांसद त्यस छिठी माग चेतको प्ले कार्ड बोया सदन ध्यान सागु ख उगो दल पाखे निग निसे संसदीय मुजा प्ले कार्ड बोया सुकुम्बासी व व्यवस्थित बसोबासिते व्यवस्थापन ठिके नियन्त्रण थत्ने राहत प्याकेज हे मागो सेनिटरी प्याड व हानिकारक वस्तु सिन ट्याक्स चिकेतन मागेन चौधो अथे मापदण्ड अख च्याका तको अस्पताल यता कार्यवाही यातन मागेन चौधो प्रतिनिधि सभा सरकारी नीति व ज्याजो हितकया सहल ज्याचौदुसा श्रम शक्ति पार्टी ठाउँको विस्क बल विरोध पंक्तिको यान चौधो कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय छगुलक पीपीएदो च्यासौ सङ्गु मेट्रिक टन रासायनिक सा मौदा दुगु खम्पित हौदो मन्त्रालय कृषि विकास महाशाखा प्रमुख डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठ मौदात मल इनिजा यचौनि आ थे त सा अभाव मौजूद हेदिल मध्य पूर्व द्वन्द्वना सा वे त लिभागु धासे वेकल स्टेट अफ होर्मुजे जचुङ पङ्ग च्या हो केन्द्र जचुङको पेङ्गुलक 2.6 मेट्रिक टन सा वेगु विश्वास पङ्कातिल द्वन्द्वना थगुने तुलना ठुक्सी सा भा थाहा हुँ न

को शैली जिंदगी बाटो मोड़े जी शब्द बखत सांगाई लय सर्वराज सांगाई सुर सपना शाही सर्वराज सांगाई।